रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: रेडियो चुनार।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खुशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harshadeepa only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

अस्सलाम वालेकुम व वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम, लो हाजिर है आपका अपना आरजे ज़ियस।

0: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप। फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चुनार के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया की किसी भी कोने में, घर में या गाड़ी में। यू कैन लॉग इन टू www.radiochunar.com।
1: हाय, मैं हूं आरजे ज्यूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।
0: दोस्तों, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन एंजॉय कर रहे हैं आप मजेदार शो व्हाट्सएप से। रहो हुक्ड मेरी जान, धड़काते रहो।

हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, देखकर हम तुझे एक शोक गजल कहते हैं। उफ ये संगे मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले तुझे ताज महल कहते हैं।

0: Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update.
3: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 FM मजदार शो व्हाट्सअप ब्रदर आज का वेदर
2: रेडियो चना वेदर अपडेट
3: जी हाँ बरसने वाला है आज भी आकाश से पानी क्योंकि जानी आज है मौसम तूफानी इट्स अवरकास्ट फॉर टुडे
2: रेडियो चना Weather update. Radio Chennai. Weather update.
3: और इस फ्रीक्वेंसी पर आज का मौसम क्या कहता है जी हाँ ये तो बरसता रहता है कुछ दिनों से टेम्परेचर जो है बहुत डाउन हो गया और आज भी वैसा ही होगा इस 23 डिग्री सेल्सियस फॉर टुडे UV index very weak per humidity 89% wind speed 3 kilometers visibility 9 kilometers abhi ke liye aur aaj ka sunrise hua 5:37 par aaj ka sunset hoga 7:39 par
4: nazar jhuka ke kare
5: tare uske haath
3: mein aur is frequency par jag Zeus ke sath mazdar show was up meri jaan sidhe hooked dhadkate raho शो का हिस्सा बनने के लिए 8899904904 है नंबर आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: जी हम वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल होता है व्हाट्सएप पर आ ही जाता है रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर क्या है जी हाँ एक ट्रेजिक इंसिडेंट जहां पर कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई एक 21 साल लड़की जिसने करी बंजी जंपिंग लेकिन अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठी बताया जाता है सेफ्टी रोप्स वगैरह जो है प्रॉपरली टाइट नहीं थी जिसकी वजह से ये लड़की की जान पर आते आते बच गई अब क्या है लोग रील्स के चक्कर में ऐसे ऐसे स्टंट्स करते हैं कि उनकी जिंदगी पर आन बनती है और वही अगर हम देखें तो ऐसी चीजें जो है इंसान की जिंदगी पर बारी पड़ जाती है तो जाहिर सी बात है इट्स मैंडेटरी कि हम इस चीज का ख्याल रखें कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स या एक्टिविटी कर रहे हैं तो सेफ्टी जो है उस चीज का ख्याल रखना जरूरी है रेडियो चनार 90.4 एफएम वायरल था व्हाट्सएप पर आ चुका है जॉक्सूस व्हाट्सएप शो रेडियो चनार सिटी हक धड़काते रहो मेरे यार

0: कौन आया?
1: दोस्तों रेडियो चैनल 90.4 FM शो व्हाट्सअप शो में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 अपडेट्स। 6 दिन के सस्पेंशन के बाद आज 25 जुलाई को रिज्यूम किया गया है यात्रा को। आपको बताते चले 3.7 लाख डिवोटीज इस बार तक जो है श्राइन को विजिट कर चुके हैं और साथ ही साथ आज रिज्यूम होने की वजह से जो वेदर

चलते सस्पेंशन लगाया गया था। वो रिज्यूम होने के बाद, यात्रा रिज्यूम होने के बाद बताया जाता है लोगों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। बस सेफ्टी और सुरक्षा का ख्याल रखने की जरूरत है। प्रायर जो भी SOPs हैं और गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करते हुए अपनी यात्रा को संपूर्ण करें। टीम रेडियो चुनाव 90.4 FM, आपकी यात्रा सफल हो।

0: Jesus.
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा.
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरफ.
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन.
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे. आज का कोट कहता है, एवरी पेन गिव्स यू अ लेसन एंड एवरी लेसन चेंज्स अ पर्सन. और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन चाक से उसके साथ मजेदार शो व्हाट्सअप से रिएक्ट धड़काते रहो.

0: to Zeus. Kon ajo.
1: Zeus. Zeus.
0: Rudy Shanar ki aur is region se par mazdar ja WhatsApp pe kar rahe enjoy main hu aapke saath hi Jack Zeus. शो का ऐसा बनी है शाहीन लिखती है शाहीन ये मुझे शो और रिचनर इक्वली अच्छे लगते हैं मैं और कुछ सुनती ही नहीं हूँ मतलब गैरिक शाल वगैरह सुचना बहुत शाहीन जी के वेल जोक्स अबाउट थैंक यू सो मच इस प्यार और इज्जत अफजाई के लिए यूं ही सुनते रहें और दिल की धड़कन को धड़काते रहें रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप भी अपनी बात रख सकते हैं 8899904904 नंबर 8999049 04 तो एक यू कॉल कर

व्हाट्सएप, यह है क्योंकि टेक्स्ट मैसेज। अब आरिफ जुड़े हमारे साथ, बोल रहे हैं आरिफ के दोनों बेटियों के साथ आज घूमने जा रहा हूँ। देखिए दोस्त, घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन मैसेज पढ़ लेते हैं। फिलहाल घूमने जा रहे हैं और सोचा आज बच्चों को थोड़ा सा हरियाली दिखाने ले जाऊं। हमने तो पेड़ पौधे छोड़े नहीं, हम सोच रहे थोड़ा सा सफारी पर जाए। देखिए सफारी की सवारी अगर आपने करनी है तो आरिफ थैंक यू पहले तो हमसे जुड़ने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक। बट इस चीज़ का ख्याल रखिए कि अभी जो वेदर कंडीशन है, लैंडस्लाइड्स, फ्लाइश, फ्लड्स वगैरह, सो इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आई नो यू आर वॉइस एंड, और इस चीज़ को मद्देनजर रखते ही आप अपने बच्चों को जो है घुमाने ले जाएंगे। वैसे आज भी बादलों और बारिश वाला मौसम है, सो प्लीज़ लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स प्रे टू ऑलमाइटी कि कुछ बुरा ना हो, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस ऑन सोशल मीडिया जहां पर यह बताया जा रहा है कि खोता खोता सला वोता वोता खोता खोता। देखिए जो भी प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ सोर्स है उन पर ही यकीन करें। सोशल मीडियाज पर पारसिक पेरसिक तिम सहलाबिक वीडियो खाला पत लुकन बामराम जस्ट क्रिएट पैनिक जस्ट क्रिएट व्यूज। अब प्लीज़ जब फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करती है फिर ये बोलेंगे सोशल मीडिया नहीं करें, ऐसे पैनिक ट्रिगर होता है। सो जो भी ऑफिशियल अपडेट्स है सिर्फ उन्हें ही सुने, या हमारी जो पुलिस है जब वो सामने आती है कि भैया ये इमरजेंसी है ये करने की जरूरत है तो उस पर ध्यान दें। ये जो सोशल मीडिया पर हवाबाजी हो रही है ये जो खोती है वो था, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और इस फ्रीक्वेंसी मजदार शो और मजदार शो व्हाट्सएप, और आज हम बात करने वाले हैं सोपोर फ्रूट मंडी की। यह वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रूट मंडीज, और वही अगर हम बात करें तो इस फ्रूट मंडी ने अपने अंदर बहुत कुछ छुपाया हुआ है, और बहुत कुछ के साथ बहुत कुछ ये भी है कि रिसेंटली हमारा एक सोशल मीडिया पर वीडियो आया था कि मैप योर कश्मीर जर्नी, क्या आप कश्मीर को किस तरह से देखते हैं, और आरजे असरा ने मंडी में जाकर ही वो वीडियो बनाया था। दैट इज रूलिंग द फेसबुक एंड सोशल मीडिया राइट नाउ विद मोर देन अ लैक व्यूज। भैया कतई वायरल होता है हमारा कंटेंट, और आपको भी चाहिए कि फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चुनार के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्सपर, और दिल की धड़कन रेडियो चुनार मस्त है मेरे यार, सो मेरी जान सिटी हक।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

रीजनल 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश टेक टॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। जी हाँ, बॉलीवुड से तड़कती फड़कती खबरों से लेकर टेक वर्ल्ड से अपडेट्स आप तक पहुंचाए जाएंगे। जरा सा इंतजार दे रहे हैं प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार। जॉक्स के साथ मजेदार शो व्हाट्सएप से धड़काते रहो।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: ¿Cómo la veo?
1: Bollywood News.
2: दोस्तों रेडियो चुनाव 90.4 FM मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में बॉलीवुड न्यूज यहाँ रूमर्स की बात करें तो पुष्पा थ्री इज़ान कार्स और विजय देवराकोंडा टू स्टार अलॉन्ग अल्लू अर्जुन इन पुष्पा थ्री और विजय जो है प्ले करने वाले हैं विलन का रोल। पुष्पा वन पुष्पा टू और अब पुष्पा थ्री जब आएगी तो कैसा होगा स्क्रिप्ट, क्या होगा माहौल, कैसे करेगी जनता रिएक्ट, देखेंगे हम होल एंड सोल। वैसे पुष्पा सीरीज जो अब तक आई है, आए हाय क्या छाई है, तबाही है। फिलहाल पुष्पा से रिलेटेड कुछ सॉन्ग्स पुष्पा मूवी वन एंड टू से आपके लिए, आप बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन सिटी हट धड़काते रहो।
3: दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले, तू कांधे को उठा के चलने पड़े न कोई बल्ले।

0: काका असली तो है ना,
1: कितनी सुंदर।
2: सुन पुष्पा, तेरे भाई की बेटी ने सोने की चेन ली है, कह रही है पैसे मेरे पुष्पा चाचा देंगे।
3: तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
4: समझ गया भाऊ, पैसे देके आता हूँ।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: Chinar Beats with Harsha Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: मैं हूँ आरजे ज्यूस।
2: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे असरफ।
4: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन। नीला
5: प्लीज, रवि मैंने कह दिया ना, मैं तुमसे कभी बात करना नहीं चाहती। नेवर।
4: नीला सुनो, नीला
5: नो
4: प्लीज, नीला मुझे माफ कर दो। नीला अरे बाबा, ऑफिस से आने में देर होगी, मैं क्या करता।
5: मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मेरे पीछे पीछे मत आओ। रवि मैं कहती हूँ, मेरे पीछे मत आओ।
4: नीला
5: ना रवि,
6: लोगों के प्यार के किस्से

जी हाँ, यार रूठ जाए तो नच नच के मनाना पड़ता है, लेकिन हम रूठ नहीं रहे हैं, बल्कि आज के लिए ले रहे हैं इजाजत। दिस इज जॉक्सू साइनिंग अप फॉर द डे। कुछ ही देर बाद आरजे दीवा आपसे जुड़ने वाली है। जी हाँ, चिनार बीट्स शो, चिनार बीट्स, बीट्स ऑन रिपीट आप एंजॉय करने वाले हैं आरजे दीवा के साथ। हॉट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम। Until we meet again, my love, keep your heads high, walk tall, and always remember that I love you all. Bye bye, tata, take care, khushbash, ma salama.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजर

0: सितारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का सुपर हिट रेडियो स्टेशन रेडियो चनार 90.4। मैं हूँ आरजे दीवा और आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं शो चनार भी, जिसमें आप और हम मिलके और भी खूबसूरत बनाते हैं इस आफ्टरनून की जर्नी को।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: हर दिल की धड़कन आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM। मैं हूँ दीबा और एंजॉय कर रहे हैं आप मेरे साथ शो चुनार पीस, जिसमें होती है ढेर सारी मस्ती मजाक फन और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करते हैं।

0: खामोशियाँ। जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: आप सभी एंजॉय कर रहे हैं शो चिनार बीट्स और बीट्स और रिपीट आप एंजॉय करते हैं ऑनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 FM, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक आप सुनते हैं दैट विदाउट एनी एड, यानी ड्रीम म्यूजिक का वादा देता है रेडियो चिनार भरपूर और सबसे ज्यादा।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग।

अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: Jeremy. Chinar Beats with Harshit Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार, जिसमें बसा है हमारे लिसनर्स का प्यार और अपनी प्यार, और साथ से हमारे लिसनर्स हमें और भी मजबूत और खास बना दे। तो बस सुनते रहिए और प्यार देते रहिए रेडियो चुनार 90.4 FM को, जो है हर दिल की धड़कन।

0: Bejabi.
1: Sir, on stage, 5 minutes.
0: Okay. Tumhari?
1: Bejabi.
0: लगता है रूम में रह गया।

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: कोक स्टूडियो भारत सब्सक्राइब नाउ।
2: खादिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मस्तन सुनो।

0: Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: प्यार कितना छोटा सा लफ्ज है ना, लेकिन देखा जाए तो दुनिया इसी से चलती है, क्योंकि इसके बगैर जिंदगी बेमानी सी लगती है। और प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक जुबान है जो दुनिया की हर एक चीज को समझ सकती है। जैसे कि हमारे लिसनर्स जो हमें सुनते हैं, समझते, अपने दिल की वाणी हम तक पहुंचाते और अपने प्यार से हमें खास बनाते हैं, और जिनका प्यार हमें खींच के लिए आता है यहाँ पर उनसे तेज सारी बातें करने के लिए।

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: रेडियो चुनार की फ्रीक्वेंसी को आप अपनी धड़कनों से मैच कर रहे हैं और जोरों से धड़काने के लिए डायल कीजिए 8999-0494। कॉल के अलावा आप टेक्स्ट या व्हाट्सएप पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आरजे दीवा के साथ चुनार बीट्स, वी लव यू ऑल।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन

म्यूनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कॉपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया

में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: Jeremy. Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: Enjoy कर रहे थे मेरे साथ शो चिनार बीट्स ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 FM. लेकिन अभी वक्त आ चुका है कि मैं आपसे इजाजत लूँ, यानी कि मैंने जो है अपने घर जाना है. लेकिन कल मैं आपसे मिलूंगी जरूर अपने टाइम पे, आपसे ढेर सारी बातें करूंगी. तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है और साथ ही सुनते रहना है रेडियो चिनार 90.4 FM.

0: Godzilla, Godzilla.
1: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
2: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
1: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
2: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए।

0: Radio Girl, a show dedicated to all the females out there. Every Wednesday and Saturday. Radio Girls, only on Radio Chinar 90.4 FM. खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर।
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

डेफिनेटली जिंदगी हो या वेंसडे, वो काफी नहीं रहता रेडियो गर्ल्स के लिए, इसलिए वापस आ चुकी हैं रेडियो गर्ल्स, क्योंकि आज सैटरडे है एंड 2 से 2:30 बजे तक हम अपनी सहेलियों कंपेनियंस के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे इश्यूज, कुछ ऐसे एस्पिरेशंस, कुछ ऐसी चीजें जिसे अप्रिशिएट करना जरूरी है. शो शुरू हो चुका है रेडियो गर्ल्स, जहां मैं और दीबा यूजुअली होते हैं, बट आज दीबा नहीं है. बट कहते हैं ना कि चाहे कोई भी हो, शो और जिंदगी रुकती नहीं है, तो शो भी नहीं रुकेगा. मैं हूं आस्था, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन. देखिए अभी शो शुरू हुआ है रेडियो गर्ल्स, इसमें क्या टॉपिक है इस ट्रैक के बाद हम बात करेंगे ज़रूर, आपको बताऊँगी मैं आज का टॉपिक क्या है, और शो हंगामा के साथ भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे. मैं हूं आस्था, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

वेलकम बैक टू शो रेडियो गर्ल्स, जहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में. स्पेशली यस, इट्स रिलेटेड टू वुमेन, बिकॉज दिस होल शो इज रिलेटेड टू वुमेन. एंड आज जिस हम चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज वुमेन एंड सेकेंड चांसेस. बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि रिलेटेड टू लव हो, रिलेटेड टू करियर हो, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू वॉट सो एवर द बॉन्ड्स और द सिचुएशंस, डिसीजंस हमारी लाइफ में लेते हैं हम, उससे रिलेटेड ऐसा होता है कि हमारा जो पहला चॉइस होता है या हमारा जो पहला डिसीजन होता है वो सही नहीं होता, या हमारे लिए इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग रॉन्ग. बट जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि देखिए, हर बारी हमारी लाइफ में जो डिसीजंस होंगे वो सही नहीं होंगे, बट उन गलत डिसीजंस की वजह से हम अपना एक नया पाथ चूज करते हैं. हम ऐसे पाथ चूज करते हैं जो हमारे लिए प्रैक्टिकली सही रहता है. स्पेशली अगर हम प्यार की बात करें, तो प्यार में कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, तो बार बार हम उसे एक अगला एक मौका देना चाहते हैं, एक आखिरी मौका देते हैं. हम अपने आप को बोलते हैं कि ये बस एक आखिरी मौका है, पर हमें ये समझने की जरूरत है कि हम खुद को एक आखिरी मौका देकर देखें, एक दूसरा मौका देकर देखें. और देखिए, अगर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो हार्ट ब्रेक से जूझते हैं, चाहे वो आपका जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, दे आर एंग्री विद यू और यू ब्रेक अप, या उसके बाद जो हमारा वो लाइफ में वो डिफिकल्ट फेज आता है, एक आपका जो रूटीन है वो चेंज हो जाता है, रूटीन के साथ साथ आप बहुत इमोशनली डाउन महसूस करते हैं. इसके अलावा अगर हम एक ऑफिशियल लेवल पे देखें कि इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड टू समबडी, वो दैट मैरिज इज़ नॉट गेटिंग एनी गुड, सो सम पीपल गेट डिवोर्स, तो उस डिवोर्स की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा लो महसूस करते हैं. सो इट्स वेरी नेसेसरी कि स्पेशली वेन वी टॉक अबाउट वुमेन, बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स हैं, बहुत सारे टाबूज हैं कि एक लड़की जो है अगर वो डिवोर्सी है तो वो एक खुद को एक दूसरा चांस नहीं दे सकती, खुद को एक सेकेंड चांस नहीं दे सकती. तो आज का जो है, आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ कि अगर लाइफ में कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी चीज़ के साथ ब्रेकअप हो जाए, चाहे वो पार्टनर हो आपका, चाहे वो कोई चीज हो, सिचुएशन हो, डायरेक्शन हो, करियर हो, बट खुद से ब्रेकअप करना इज नॉट इन द ऑप्शन. स्पेशली जो चीज़ें आपको यू नो दे आर नॉट फेवरिंग यू, कोई ऐसी चीज़ होती है ज़िंदगी में, चाहे वो पार्टनर हो, कोई डिसीजन हो, कुछ भी हो अपनी ज़िंदगी में जो आपको फेवर नहीं करता, उससे ब्रेकअप कर देना बेहतर ही है. और अपने साथ आप खुद को एक सेकेंड मौका देना, क्या कर सकते हैं हम, क्या करना चाहिए, उसके बारे में आगे बात होगी. अब देखिए, आई एम वेरी श्योर, डेफिनेटली श्योर दैट हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप वाला फेज ज़रूर आता है. अगर आपकी लाइफ में आया तो जल्दी से शेयर कीजिए. 8899904904 इज़ अ नंबर. आपने क्या किया अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए, सुधारने के लिए? क्या आपने दूसरा मौका किसी और को दिया या खुद को? मैं हूँ असरा संतरा, ये रेडियो सुना 90.4 FM. ये है शो हंगामा, नहीं है शो हंगामा आफ्टर फैबिट, यू नो शो हंगामा आने वाला है, बट अभी रेडियो गर्ल्स है. एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुना 90.4 FM.

0: Radio Girl, a show dedicated to all the females out there. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
1: वेलकम बैक टू शो रेडियो गर्ल्स. और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं कुछ ट्रैक्स वापस आऊँगी और आपको बताऊँगी कि क्या करना चाहिए. एक लड़की, एक लाइक वन वुमेन हु वांट्स टू लिव हर लाइफ, चाहे क्या भी कैजुअलिटी हुई हो, क्या भी डिसीजन गलत हुआ हो, अनअवेलेबल पार्टनर्स मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हमारे डिसीजन सही नहीं होते. सो स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट समबडी हु इज़ गोइंग थ्रू पोस्ट डिवोर्स, वो भी ज़रूरी है कि वो अपना ख्याल रखे खुद को. वो जो वो एक हमारा एक वर्जन होता है जो गलत डिसीजंस लेता है, या हमें लाइफ का एक्सपीरियंस कम होता है, वी आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट व्हाट वी कॉल इट, कि हमें ज़िंदगी जीने का वो एक्सपीरियंस नहीं होता. वो तब एक्सपीरियंस आता है जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते, आपकी एज आगे बढ़ती है, आपको और एक्सपीरियंसेस आसपास देखने को मिलते हैं या आप एक्सपीरियंस करते हैं. दैट इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू गैदर एक्सपीरियंस ऑल अराउंड. और स्पेशली अगर हम पोस्ट डिवोर्स की बात करें, या कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर आ रहे हो, या बहुत सारे ऐसे होते हैं वेयर देयर इज नॉट जस्ट के टॉक्सिक लोग अराउंड हो, बट सम पीपल आपसे जो लोग दूर चले जाते हैं वो किसी डेथ की या कैजुअलिटी की वजह से आपसे दूर चले जाए, तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप खुद को एक मौका देके देखें, आप खुद से प्यार करें, आप हॉबीज़, स्पेशली हॉबीज़ आर द रियल गुड थिंग अ पर्सन कैन हैव, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इसे सीख लेता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसे समझ आती हैं कि मैं हूँ क्या. लाइक यू नो, हर मूवी में या किसी भी ऐसे थिएटरिकल आर्ट में आपको समझ आता है, या किसी भी आर्टिस्टिक चीज़ पर आपको हमेशा एक चीज़ तो होती है कि जहाँ पर फोकस किया जाता है, दैट इज़ कि फाइंडिंग योर सेल्फ, वट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ, आप करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, आप हैं कौन, तो आपको क्या पसंद है. तो वो चीज़ें आपको तब पता चलती हैं जब आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं और आपको समझ आता है कि धीरे धीरे तो अपनी कंपनी में ही मज़ा आने लगता है. देखिए, शीला दीदी ने एकदम सही कहा है 7 साल पहले कि अपना ही जो है उसी को आप एम्ब्रेस कीजिए, अपनी आइडेंटिटी को एम्ब्रेस कीजिए, और किसी कोई और आपको वैलिडेट करे ना करे, आप खुद खुद को वैलिडेट कीजिए. एंड दिस इज़ द एंडिंग नोट ऑफ टुडेज़ रेडियो गर्ल्स, कि हमेशा हम वी एंड रेडियो गर्ल्स एट अ वेरी पॉजिटिव नोट, बिकॉज ये एक ऐसा शो है जहाँ पर सब लोग डिस्पाइट ऑफ द जेंडर, वो सब लोग सुनते हैं, अपनी राय रखते हैं, सोचते हैं इस बारे में कि क्या हम अपनी लाइफ को किसी और तरीके से बेहतर बना सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट शो रेडियो गर्ल्स. कुछ ही ट्रैक्स के बाद हम बात करेंगे एंड वी विल शिफ्ट, हैव अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स द शो हंगामा. मैं वस्त्रा सुंदर, ये रेडियो सुना 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार। कुछ ही ट्रैक से बाद हम बात करेंगे आज का क्या ट्रेंडिंग है और अपडेट्स क्या है और आज का टॉपिक क्या है। मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हंगामा, करते रहे ड्रामा।

0: बजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM.
2: वेलकम बैक टू द हॉरर फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 FM पे शो चल रहा है हंगामा जो है हंगामा एंड दिस इज द टाइम फॉर समथिंग ट्रेंडिंग समथिंग क्रेजी दैट इज ऑन द इंटरनेट राइट नाउ सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर रहा है लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं बेचो आज यूस अख चीज ट्रेंडिंग यूस एक्चुअली कोशिर छु बेचो कोशिर जबान मज मगर तथ थोड़ा फ्यूजन करित यानी कि जो भी फ्यूजन कश्मीरी मिलता है हमें आजकल बट जो ऑर्केस्ट्रल नहीं मिलता और दिस इज अ ट्रैक दैट इज रिंद पोषमाल बट इन अ वेरी डिफरेंट टोन एंड इन अ वेरी डिफरेंट आर्ट

सारी नई जो जेनरेशन है वो भी अपने कल्चर को और थोड़ा एक्सप्लोर करती है. एंड दिस इज़ द लाइक आई थिंक कि हर वक्त की हर समय की अपनी एक डिमांड होती है. और अगर अभी हमारा जो यूथ है वो अपने कल्चर को इस तरह से लाइक सुन सकता है, एंटरटेन हो सकता है और जान सकता है अपने कल्चर को, आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनी थिंग बेटर देन दैट. मैं मस्त रहा सुनता रहिए रेडियो सुना 90.4 FM. ये है हर दल की धड़कन.

0: से असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: You have tuned into the hottest frequency of North Kashmir 90.4 FM. मैं हूँ अर्जय स्टार। शो है हंगामा एंड दिस इज द टाइम फॉर नॉट डिस्को बट रेलवे अपडेट। और आज की अपडेट ये है कि एवरी जो ट्रेन है, सबसे पहले अगर हम लोकल ट्रेन्स की बात करें जो कश्मीर रेलवे लिंक पर चलती हैं, बारामूला, बड़गाम, बानीहाल, संगलदन, कटरा, और हम वंदे भारत की भी बात करेंगे, बट जो लोकल ट्रेन्स चलती हैं वो एज पर द समर टाइम टेबल शेड्यूल है। एंड यू कैन अवेल द समर टाइम टेबल शेड्यूल एट रिस्पेक्टिव स्टेशन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फ्रॉम द ऐप रेल वन। जो रेलवे अपडेट्स होते हैं, स्पेशली जो रेलवे टाइम टेबल है, वो आपको कहीं से भी इंटरनेट से मिल सकता है, बट जो ऑथेंटिक है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ एप्स जो एक्चुअली आपको ऑथेंटिसिटी के साथ टाइम टेबल नहीं दिखाते हैं, सो इट्स बेटर कि आप गवर्नमेंट जो ऑफिशियल ऐप है रेल वन, इंडियन रेलवे ऐप्स, वहाँ आपको सारी डिटेल्स, सारे अपडेट्स मिल सकते हैं। एंड स्पेशली वेन वी टॉक अबाउट कि जो सिर्फ कश्मीर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इंडियन रेलवेज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है, द ट्रेन बिटवीन द स्टेशंस और लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन एंड कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है वो भी आपको पता चल सकता है। एंड बस यही है कि आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सवारी अपने सामान और खुद की खुद जिम्मेदार होती है, और अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर 10-15 मिनट पहले पहुंचे तो इट्स ऑलवेज बेटर, बिकॉज अभी मौसम भी ख़राब है, सो समटाइम्स देर इज़ ट्रैफिक जाम और एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रैफिक, सो बेटर है कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर 10-15 मिनट पहले पहुंचे एंड मेक श्योर कि आपका जो शेड्यूल है वो डिले ना हो। मैं मौसरा सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Welcome back to Show Hangama, only on Radio Sonar 90.4 FM. और जैसे कि हर दिन का हमारा एक टॉपिक रहता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है जहाँ पे हम बात करते हैं कि आज के दिन हम किस खास चीज़ पर बात करें, डिस्कस करें, आपकी राय जाने. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर वेमेन एंड देयर आइडियोलॉजी एंड रेफरेंस टुवर्ड्स फ्रीडम. फ्रीडम इन द सेंस कि वो कैसे अपनी लाइफ में एक ऑटोनॉमस बिहेवियर रखना चाहती है, जो कि सबका हक है भाई. बट अगर लड़कियों की बात करें तो उनके लिए एक पर्सनल ये बैटल जैसा होता है, एक पर्सनल चॉइस होती है, एक सेल्फ रेजिलियंस का एक मौका होता है, एक खुद को प्रूव करने का, एक स्टेटमेंट बनाने का, अपनी चॉइसेस खुद लेने का, सोशल

स्टिग्मा से उनसे दूर जाने का और अपनी मर्जी पे ज़िंदगी जीने का, एक अपना घर बनाने का, अपनी चॉइसेस से काम करने का, जो काम करना चाहते हैं वो करें, जिस तरीके से स्पेंड करना चाहते हैं वो करें। और आज हम उस फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। ट्रू दैट, रात के बाद ही सवेरा होता है। और इस सवेरे की आज हम बात करेंगे कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं, चाहे हम जिस भी स्कीम की वजह से बोलें या अपनी विल पावर की वजह से बोलें या गवर्नमेंट हो, पेरेंट्स का सपोर्ट हो, मेंटालिटी चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक्चुअली अभी बहुत सारी लड़कियां अपने डिसीजंस खुद ले पा रही हैं, उनके पास एक पर्सनल चॉइस है, उनके पास एक अपना अपनी लाइफ अपनी स्टोरी लिखने का मौका है। मैं मौसरा सुंदरी रेडियो सुना 90.4 FM, और आज एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है। आप भी बताइए कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है कि आपके आसपास जो महिलाएं हैं वो अपनी जो आज़ादी है, अपनी जो फ्रीडम है, वो किस तरह मनाती है। मैं मस्त रहा सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM, ये दिल की धड़कन।

0: मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
1: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम। और जैसे कि आज हम वेमेन एंड फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं, एक सेल्फ ऑटोनॉमस बिहेवियर, खुद की कहानी खुद लिखने की बात कर रहे हैं। बट देखिए, बातें तो होती हैं, बट आपके विचार, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके थॉट्स जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्दी से जुड़ जाइए। दिस इज़ अ रिमाइंडर दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो 8899904900।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: करो हंगामा आरजे असरा के साथ
2: ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
3: हाय मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। और जैसे कि आज हम वेमेन एंड फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली साथ साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि वेमेन आर द वन हु हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स प्रायर भी, और अभी भी कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जहाँ पे औरतें बहुत कुछ फेस करती हैं। और हमारे आज का जो टॉपिक रहता है, आज हमारे शो का जो टॉपिक है, दैट इज़ कि हम फ्रीडम के क्या मतलब निकालते हैं। फ्रीडम के बहुत सारे मतलब हैं एक औरत के लिए। अगर हम सेल्फ चॉइसेस के बारे में बात करें, वो अपने जो पर्सनल डिसीजंस हैं वो एक ऐसी पोजीशन में ज़रूर होनी चाहिए, उसे ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने जो करियर हैं या अपनी जो लाइफ पाथ्स हैं, विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी जजमेंट, कोई उसे कोई बुली नहीं कर रहा, कोई उसे जज नहीं कर रहा, कोई कुछ डरने की बात नहीं है, वो खुद अपनी लाइफ का डिसीजन ले पाए। इसके अलावा ये भी है कि एक फ्रीडम का एक और मतलब है एक महिला के लिए, दैट इज़ एक्सप्लोरेशन। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, इंक्लूडिंग मी, आई ऑल्सो लव टू ट्रैवल, एंड बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ who want to travel the world, who want to travel alone, जिसे जो चाहिए कि हम हमें कोई अकम्पनी ना करे, हम वो सोलो ट्रैवलिंग का जो एडवेंचर है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम मूव करना चाहते हैं, फ्रीली मूव करना चाहते हैं, हम दुनिया देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि दुनिया में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्चुअली सब के लिए बनाई गई थी, और हम भी वो सारी चीज़ें खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं। स्पेशली जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, एक ज़िंदगी में वो ऑटोनॉमस चॉइसेस की बात करते हैं, मुझे हमेशा ये गाना जो रॉक स्टार से हवा हवा, एंड इट्स ऑन ऑल ओवर द इंटरनेट ऑफ कोर्स, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ट्रैक्स दैट इज़ लाइक अ सिंबल ऑफ फ्रीडम फॉर वुमेन इन देयर ओन लाइफ्स, कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। बिकॉज इस गाने की कहानी ही वैसी है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ ट्रैक, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इनकरेजिंग स्टोरी, जहाँ पे इस गाने में पूरी की पूरी स्टोरी बयां करता है कि कैसे एक राजा अपनी जो रानी है उसे बहुत सारी चीजें नरेट करता है। दिस इज नॉट जस्ट अ सॉन्ग, दिस इज एन इमोशन ऑफ फ्रीडम फॉर अ वुमन हु वांट्स टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन चॉइसेस। अब अगर आप ये गाना बहुत ध्यान से सुनेंगे तो देर इज़ अ स्टोरी, देर इज़ अ स्टोरी, हर चीज़ की स्टोरी है। और एट द एंड ऑफ द डे और जो रानी होती है वो ये कहना चाहती है कि मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ, मैं अपनी मन पे जो चाहूँ वो करना चाहती हूँ।

बिल्कुल, और उसी आज़ादी के बारे में हम भी आज बात कर रहे हैं कि एक लड़की क्या अपनी ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ों पर फोकस करना चाहती है। वो फोकस करना चाहती है कि मैं अपनी जो खुद मैं खुद

ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, मैं खुद करना चाहती हूँ कोई चीज़, बट दैट्स अ वेरी बिग थिंग. और आज बहुत सारी लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हैं, वो खुद कमा रही हैं, अपने घर में रह रही हैं, अपना घर, ससुराल मायका नहीं, अपने घर में रह रही हैं, और वो बहुत बड़ी बात है. और आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं. एंड यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द शो. देखिए, दिस इज समथिंग के दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर वुमेन, दिस कॉन्सेप्ट इज़ फॉर मैन ऑल्सो, कि वो कैसे अपने आस पास उन लड़कियों को, चाहे वो उनकी बहन हैं, मदर हैं, या जो कुछ भी, जो भी रिलेशन है उनका उनके साथ, वो देखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रही हैं, वो इस मोमेंट पे हैं, ऐसी सिचुएशन में हैं अपनी लाइफ पे, कि वो अपने साथ साथ 10 घर पाल सकती हैं. और ये कश्मीरी कहावत है, ये कशिर पठिवा वन ने, कि अख कूर्च 10 घर पकनावा. और सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कितना कमाती है, इसलिए कि जो नॉलेज सिर्फ एक लड़की के पास होती है, वो सिर्फ और सिर्फ वो उस तक कन्फाइंड नहीं रहता, बल्कि एक पूरी जेनरेशन तक कन्फाइंड नहीं रहता, बल्कि जो आने वाली जेनरेशन्स हैं उनके लिए भी वो नॉलेज है, उनके लिए भी वो फ्रीडम है, उनके लिए भी वो सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ रिलायंस है. बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी जो जीत हमें हासिल होती है उसके बारे में बात करेंगे. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार. मैं बस यूँ कही और यूँ वापस आई.

0: लीजिए असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: हाय मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर। और जैसे कि आज हम वेमेन एंड इंडिपेंडेंट चॉइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज से ही ये चीज़ें हो रही हैं, बल्कि इन लेट 90s से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई है। डेफिनेटली उससे पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, बहुत कम जगहों पर होती थी, बट लेट 90s से अगर बात करें तो स्पेसिफिकली एक पॉलिटिकल वॉइस जो लड़कियों की है, औरतों की है, वो आगे बढ़ी। यानी कि सबसे पहली जो वेव थी वो लेट 90th सेंचुरी से शुरू हुई। लीगल एग्जिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, या राइट टू वोट, जो अभी हमें बहुत ही ऐसा लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द राइट्स दैट वी हैव बिकॉज वी शुड नो आवर राइट्स, बट ये राइट पहले नहीं था। 90th सेंचुरी से ये राइट हमें मिला है। उसके अलावा जो भी सेकेंड वेव 1960s 1970s से आई, जब वर्क प्लेस इक्वालिटी आई कि हर जगह जो इक्वल वेजेस की बात है, या हर जगह इक्वालिटी की बात हुई, फेमिनिज्म की बात हुई, या जो भी डोमेस्टिकेशन, जो डोमेस्टिक डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं, ये सारे राइट्स तब वजूद में आए। और उसके बाद की जो भी वेव्स हैं उसमें आपको ये समझ आता है कि देयर इज़ फ्रीडम इन एवरी एस्पेक्ट। आपके साथ अगर गॉड फॉरबिड कुछ गलत हो रहा है, वॉयलेंस हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या यू डोंट फील सेफ अबाउट समथिंग, यू हैव द राइट्स टू टॉक अबाउट इट टू योर कंपनी, टू द प्लेस यू वर्क इन, or maybe in the school, in the colleges, everywhere, to you can make the cases legal because you should know your rights. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि आपके पास हकूक क्या है, आपके हक क्या है, तब तक आप आगे फिल्टर आउट नहीं कर सकते कि कौन इंसान आपके साथ क्या कर रहा है या कौन सी सिचुएशन सही नहीं है जिसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर हम अभी की बात करें, देर आर लाइक इफ़ वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकली ट्रबल, जैसे कि हमने बात की कि वुमेन फ्रीडम इज़ ऑल्सो एक्सप्लोरेशन टू सी द वर्ल्ड दैट इज़ मेड फॉर एवरीबडी। सो जब हम वुमेन की बात, ट्रबल की बात करते हैं, सोलो ट्रबल की बात करते हैं, तो अभी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया ट्रबलर्स हैं जो ट्रबल गो करते हैं, गो गेटर्स हैं, हु एक्चुअली डू दिस थिंग कि वो अब बहुत सेफ होकर सेफ्टी के साथ ट्रैवल कर पाते हैं। अब मे बी देर आर सम सेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे वो नहीं कर पाएंगे ट्रैवल सेफली विदाउट बीइंग अकंपनीड बाय एनीबडी, बट ये बात है कि मेजर सिटीज़ जो हैं, या बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं, या मैक्सिमम स्टेट्स ऑफ इंडिया, यू कैन ट्रैवल फ्रीली। एंड अभी तक का अगर देखा जाए तो दोज सेफ्टी काउंट सबसे जो परसेंटेज ज़्यादा है दैट इज़ इन साउथ एंड स्पेसिफिकली केरला। केरला इज़ नोन फॉर द सेफेस्ट environment for solo traveling for women. और धीरे धीरे जो भी हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो सोसाइटल माइंडसेट है, वो भी बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हाँ अगर सबके पास ये हकूक है कि वो जा सकते हैं, वो दुनिया देख सकते हैं। और क्यों? क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, उन्हें आज के जो सिस्टम के बारे में पता है, उन्हें आज की सोसाइटी के बारे में पता है, तो धीरे धीरे जो सोसाइटी है वो बदल रही है एंड इट इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। मैं हूँ आस्था, सुनते रहिए रेडियो चुनार 90.4 FM, and you can be the part of the show, and that is the biggest and funniest and like the craziest factor of the show. And all honestly, aaj Saturday hai, so there are a lot of people who are going back from colleges, from job or whatever. So it's better ki aap apna khayal rakhein aur mausam ke hisab se take a jacket, take a raincoat or an umbrella with you. Main hoon Asra, sunte rahiye Radio Suna 90.4 FM. Ye hai har dil ki dhadkan.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

तो चली और जाना तो पड़ेगा क्योंकि सैटरडे है बस, कल है संडे फंडे, और देखिए संडे को एंजॉय करना सबका हक है। एक बात जरूरी है कि हम जो भी हैं रेडियो चनार, संडे को भी बैक टू बैक ट्रैक्स प्ले होते हैं एंड दैट इज समथिंग स्पेशल। एंड देखिए मंडे के दिन वापस आऊंगी बराबर 2 बजे, 2 से 4 रेडियो चनार पे होता है हंगामा ड्रामा एंटरटेनमेंट और क्या क्या।

अब देखिए, अब टुमारो इज द टाइम, हफ्ते में एक दिन मिलता है, गॉड्स फेवरेट किड्स हैव सैटरडे ऑफ आल्सो, सो अगर आप आज भी ऑफ था आपका या आज नहीं था कल है, सो मेक श्योर दैट यू डू समथिंग फॉर योर सोल, यू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ख्याल रखें, रिचार्ज योर सोल, गो आउट विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स और सोलो इवन, लाइक कम ऑन, यू कैन हैव फन. एंड मोर ओवर इट्स ऑलवेज बेटर कि आप नेचर के अराउंड रहें ऑन द डेज यू कैन बी, बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू बी अराउंड नेचर. मैं हूँ असरा, आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते प्ले कर रही हूँ आपके लिए कुछ खास. ऐसी चाहना है कि आप हमसे कनेक्टेड रहें, और यहाँ ही नहीं बल्कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ भी. और इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, RJASRAA इज द आईडी, यू कैन कनेक्ट ऑन ऑल ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM, बैक टू बैक ट्रैक्स के बाद रेडियो सुना देता है सबसे ज़्यादा हर दिल की धड़कन. सही है मेरे यार, ये सब चीज़ें आर इमोशन फॉर रेडियो सुना. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM. मैं जा रही हूँ, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
1: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
0: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
1: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
0: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
1: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: ओ मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना,
2: कुछ और मंगला है ना, मोटरसाइकिल नहीं
3: दिला दीजिए ना।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं।

0: crisis that has been plaguing for the last few years.
1: जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। Let's do it together. Let us prove it together that we are responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
2: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

Jeremy. Jar Beats with Harshi Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार लेकिन एक बार

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे कहिए ना।

0: करार हो गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: और बचाओ, ओ मुए, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी, ओ नटखट, ओ खटपट, ओ पनघट, ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना, ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना, हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया, ओ सवरिया, हाय हाय, ओ तेरी तिरछी नजरिया,
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, होय होय, ओ जाने सारी नगरिया।
0: आँखें सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया, ओ सवरिया।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना,

0: हमारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,

हम थे वो थी और समार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

0: आंख की और रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: रहेगा।
1: दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम। दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र की है।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 9।

दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

सुबह चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात
0: जो आप

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

कष्टी चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प प म रे

0: गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया,
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया, ओ सवरिया।

0: न आए करार। ओ गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर, क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूँ न आए करार।
1: हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: साबुन की शोर बचाओ, ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गया।

0: तने प्यार हो गया।
1: ओ मनु तेरा हुआ अब मेरा।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आ हा हा। घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ही है।
1: ए, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो।
0: सौ बातों की एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।